जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। खिलू के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। आज बुधवार का दिन है, 29 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। बुधवार का दिन 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325 65 65 60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0322 66 66 11। वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए ये प्रोग्राम जो है दुनिया की कोने कोने में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हर। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में।

हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुन वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गए। 7:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज 29 जुलाई है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को बधाइया ही बधाइया बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पुराण का दिन, तो चले हम आपको सुनाते हैं ये सुंदर सा भजन।

इस प्रोग्राम में पेश किए गए आज बुधवार के खास प्रोग्राम में, आज जबकि 29 तारीख जुलाई है, तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसी खास उपलक्ष्य पर ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। घड़ी की ओर देखा जाए 8 मिनट बाकी है सुबह 7:30 में और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अभी बार ये सुंदर भजन।

सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुन वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। बुधवार 29 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का दिन, सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। चले मिलकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है विपिन सचदेवा की।

सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आप सभी सुनने वालों के लिए ये सुंदर सा भजन बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आज बुधवार की खास सुबह की प्रोग्राम में गणेश चालीसा की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। और सुनने वालों, इस भजन के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

गणेश जी का 40 बस प्रोग्राम में पेश की गई अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ सुंदर सा गुरु जी की आरती बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज जबकि गुरु पूर्णिमा है तो इसी खास उपलक्ष पर यह सुंदर सा आरती भजन आप हर एक के लिए पेश किया जा रहा है।

ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अगली बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशिकिंग और साथियों की आवाज में। गाना का बोल है बारिश।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2362266611। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये अधूरी कहानी है। फिल्म का नाम पापोन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

सानु और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका।

उसमें ये फिल्म एक रिश्ता उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर देसाई एंड शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी टारगेट नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं 24 पर दाग यानी कि 24 घंटा लगातार ये टारगेट नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं। जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

एक काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60 और ये तार की नंबर जो है टेलीफोन नंबर कंतूर का दफ्तर का जो है 24 घंटे पर एक बार होता है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए। अब वैसे हमेशा भी आप ईमेल कर सकते हैं रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए और इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मुकेश एन लता, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम परस मनी।

मुकीस और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जले मोहम्मद रफी की आवाज में आपकी बार ये गाना मेरे गाड़ी उड़न खटोला। गाना का बोल है मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है

उड़न खटोला मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। किशोर एनाशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। आशा भोसले एन किशोर कुमार।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए किशोर और आशा जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्म दुलारी से पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और साथियों के आवास में ये गाना पेश की गई। पुरानी फिल्म दुलारी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की इस पुरानी नगमे की खास प्रोग्राम में। किशोर एनाश, हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम

0: इत्तेफाक है।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई है। द माइटी मुकेश, द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये

दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गए रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना धीरे धीरे बोल।

दिलीप कुमार और खास तौर पर विजयंती बाला का खास फिल्म फिल्म राम और श्याम, उसी फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। ये खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में अबकी बार होगा और आपको हम ले चलते हैं ये गाना की ओर।

0: गाना रफी साहब की आवाज में बस पेश की गई
1: है।
0: चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा लता मंगेशकर और फिल्म का नाम

इसकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जाए।

रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कमल बारूद प्रोग्राम में फिल्म का नाम मन मौजी।

बीच की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम मनमौजी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आवारा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है द फिल्म, फिल्म का नाम है प्यार किए जा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म प्यार किए जा, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है किसने पुकारा मुझे,

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, फिल्म का नाम प्यार किए या। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर और आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे

रेडियो SBS की जरिए किशोर एन हर्षा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है किशोर एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाता रहे मेरा दिल गाना जो पेश किया जा रहा है।

और किशोर कुमार के आवाज में आज के प्रोग्राम में जो आप सभी ने सुना, रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, सभी कामकाज के लिए 0302-565-6060। इसी तार की नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं, या तो ईमेल कीजिए radio SBS का वेबसाइट की जरिए radio SBS.nl की जरिए।

किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म यादों की बारा। खूबसूरत नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए मोहम्मद रफी एंड आशा।

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम हमराही।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम हमराही, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अलका एंड विनोद राठौर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अब की बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0832266666

गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई द मूवी गेम। अब की बार गेम फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है शान की आवाज में।

शान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए कुमार सानू और अनुराधा पोटवल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.nl वेबसाइट की जरिए। चलिए प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: ये प्रोग्राम भी पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी, फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

सभी सुनने वालों की सेवा भी है। आसरों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। समीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में

0: और रेडियो वेस्ट में इसके जरिए अभी आपने सुना फिल्म का नाम कसम से है। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश
1: किया है। चलिए
0: प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आवाज में यादव प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसके जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड के प्रोग्राम में।

के आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए फरमाई से हुआ तमाम खबरें तमाम रिक्लाम मृत्यु समाचार के लिए 0322 65 65 60 टेलीफोन नंबर है।

ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

şey cevizeli yenle Sıçtın çoğuhan diye ben sümem yavni Sunaki burada meyliye kutsura canem दबंग की ओर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

En Shreya जी की आवाज में सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल

रही और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एन कवि।

यूएसबीएस की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमी और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

उसमें ये गाना पेश की गए सालीमार फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में रेडियो SBS का आज की खास प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। असरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में अगली बार ये गाना बस सुनते ही रहना।

मंगेशकर की आवाज में एक फिल्म शर्मीली, फिल्म का नाम शर्मीली, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश।

गाना बज प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आसरो में थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से मोहम्मद रफी और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार शोला और शबनम फिल्म का नाम होगा।

द फिल्म शोला और शबनम मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार आपको हम ले चलते हैं एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, लेकिन अब की बार सुभाष भाटिया की आवाज में पेश किया जा रहा है जो तलत जी का गाने बड़ी ही खूब गाए हैं। आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0362656560। इसी तारकी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं।

सुभाष इस भटिया की आवाज में तलत जी का एक खास गाया हुआ गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर हेमंत कुमार की आवाज में एक गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म नागिन का गीत आप सुनते ही रहना।

हेमन कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये खास पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है औलाद।

0: मैं चलता हूँ मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। पर आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसके संग तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत, एंड गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार लो।

तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इस गज़ंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gieton Kelleher is gezongen door Rijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

0: मोहब्बत होना जाए is gezongen door Alka Yachnik en Kumar Sanu. En gezongen door Amit Kumar komt het volgende liedje in het programma Geetum Kelleher uit de film Raju Chacha.
1: प्लीज मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो. हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए.
2: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया. समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ. प्लीज शेखर, लेट मी गो.

साइला रे क्या बोला फिर बोला रे इसे फिल्म शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह द फिल्म घाट कम दाह सॉन्ग दौर उदित नारायण अलका याचनिक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला झुमका चांदी दा झुमका चांदी दा

क्या रहा दे रंग, आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है, इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दोस्त सलमा आगा है बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietong Keleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni Wet Senni komt Roeberoe.

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,